बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई।
1: उफ बल्ल घरक भिटा निखौराइदा
2: मुस्कान पिथाई, घरक भिटा आम्ही निके निउराइ छ कि का? खेतो मस्ता खारन कला मिनी लै जाय पर्ना रह।
1: आब उराइदा जानती बादा
2: ले ले, वही मिनी बना कर भेजिए तू लै जा दियस ना।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ बिटा मत दिला को बा माटी ने सब दिए पर टीका। हाँ सब दियो। अय्या दाई सब का डरल
2: दाई खै खै कहाँ काटो छाई।
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरल।
2: अरे ले हाली क्यों बाटो मत है मुस्कान मत सब का डरलस ले हाली।
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपुआ करलस कलब
3: ना त्याव काकी तो मुस्कान न्या त्या का शांत होकर बैठो ना। बेन काकी मुस्कान न स्वास्थ्य न सुटाई हर सब निकल रखना।
2: बैठा भैया मुस्कान छाई स्वास्थ्य का सुटो टा
1: बैठा।
3: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा घर गहना निकल जैना मेकअप फाफसर बना रही टा वो हाथक चुड़िया की निकाल दी टा वाकर कटला हाथ भर नहीं चला था।
2: बैठा भैया सबको कटला ठाक आंदर पांदर चिर का इंजेक्शन ने तान का अथवा मुंह ले चूस का बीस पोर निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबको कटला ठाक आंदर पांदर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई थे नहीं हुई पानी थे नहीं बुझली
2: उसी नो कल से झर मेरा लान खा वही नीटार खा वाकर सबको कटला ठाम और लगा दी उठा ना नानू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खर बुटी ओ जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानू बुझनु।
3: फिर काकी रामेश्वरा मोटरसाइकिल लेखा आई कही झट्ट से झट्ट साधन खोज कर एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाई सेक जाई कल से मुस्कान होना झट्ट सुमर बनाई सेक जाई जा जाए का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही था स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम दाता हम कह कर हेरा पड़ा। हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुल हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में को सर्पदंशक उपचार कही जिना रही हो वहाँ ले जाए पड़ा मुस्कान हमें
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर राकेश नानू आ गई ले
3: ले ले काकी मुस्कान हना महिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में बैठा रही था झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कला से मुस्कान हना बचाई सीख जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहा कौन सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मुस्याकल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो न व्यक्ति की छुना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझन साथ फिर काट से ठा संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकल से मुक्र सपो विषाण अलग निरलग पहचान कई खा सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो डसलक मन यहाँ न बचाई सक दिठा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर सकती था सपा दस लाख मने यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली यही ले उ मने एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसा पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
2: ओसीएमसी भनेको लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
2: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैङ्गिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
3: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
1: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाँच से सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल।
4: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का?
1: मिस्तरान बर्जन उकना घर हेरो ना, अट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुहाका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो ना, कबु कहुर घुम जाए त थाहा पाए।
5: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा के वस्ता बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बरई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुनी।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: कै आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ।
1: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
2: चर्पी भर्लो चेपे का चिन्ता आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाईमा फोन गरी आबाक सरसफाई कै दिही।
3: फोन नम्बर कटा हो त
2: ली डायल गरी 97 6 20 20 300।
3: हेलो, आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई हो?
4: हजुर हो।
3: महिन राजापुर बजारमा ट्याङ्की सफाई गर्न बा?
2: अपनौ कन्ठे, टिकापुर, जानकी, जोशीपुर, भजनी, सत्ती, राजापुर, गेरुवा ओ लम्की मन सेफ्टी ट्याङ्की, गोबर ग्यास ओ रिङवाला टोयलेट सरसफाई कर परिकलसे आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाहन सम्झवे। सञ्चालक शेरबहादुर थारू। सम्पर्क नम्बर 97 6 20 20 300 हो 98 6 56 92 0 26।

कार्यक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती हलवाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से सामुदायिक रेडियो के रणनीति योजना निर्माण कार्यशाला मजा अभ्यास नियंत्रणता देती बाल बालिका कानून अल्पसंख्यक के विषय में विषय उत्थान करना सुझाव स्थानीय तरकारी उत्पादन में कमी आयल पाछे मूल्य में वृद्धि महंगा में तरकारी किन्न उपभोक्ता आंकड़न की बाध्यता बाजुरा में जीप दुर्घटना हो के नौ जाने घायल बुधवार से पानी पर्ना कम हुई टीजैना हो शुक्ल फाटा निकुंज में संपर्क विहीन सत्र जहान के सकुशल उद्धार सुदूरपश्चिम प्रदेश के पूर्व सभासद सदस्य उमा देवी बादी से सामुदायिक रेडियो महिला दलित जनजाति पाछक परल हुकरण के मुद्दा उत्थान करते रलक बतैले बाटै सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के चौथो पंचवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण केलक आयोजना करलक कार्यशाला के दोस्रो दिन कार्यक्रम में सहभागी हुईती बादी से यी समुदाय के मुद्दा थप उठान करना सुझाव देले बाटै दोस्रा दिन की कार्यशाला में महिला बाल बालिका सुरक्षा धार्मिक तथा जातीय क्षेत्र के विषय में समेत गिल्बा कार्यशाला में सहभागी संतनयनकारी मंडल नेपाल के अध्यक्ष नरबहादुर रावल सामुदायिक रेडियो से आध्यात्मक संघ संस्था हुकरण सम्मान सहित के स्थान देलकमा मानवता समेत सम्मान करना काम में सघायल बतुले बाटै टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर एक के वड़ा सदस्य करेश घटी मगर सामुदायिक रेडियो के सामर्थ्य अनुसार नागरिक सचेत करैना काम करती रह को अब करती रह काम की दिगोपना में ध्यान देना आवश्यक रहल समेत बतवैली बाटे योजना निर्माण कार्यशाला में मुक्त कमलरी उपकरण के अगुवा बिन्द्रा चौधरी निम्न वर्ग थारू समुदाय मुक्त कमैया मुक्त कमलरी दलित अपांगता ओस्तका उत्पीड़ित समुदाय समेत के कार्यक्रम समाचार में स्थान देना सुझाव देले बाटे धार्मिक संस्था के ओर से सुझाव धरती नेपाल आर्य समाज टीकापुर के सचिव टीकाराम आर्य सामुदायिक रेडियो में समेत नियमित रूप में धार्मिक कार्यक्रम संचालन फिटेरलको यही से नियंत्रणता हुई पर्ना बटोले बाटे बाल कल्याण संघ टीकापुर के कोषाध्यक्ष धनराज शाही सरकार 2087 साल में बाल मैत्री स्थानीय शासन घोषणा के लग काम करते रहकर से रेडियो में फिर बाल मैत्री स्थानीय शासन ही प्राथमिकता दे के काम करे पर्ना अस्तक विपद तथा बाढ़ी में समय में बाल बालिका हुकरण जोखिम में पर्न रहकर से सूचना तथा संदेश प्रवाह में ध्यान दे पर्ना बाल बालिका हुकरण जोखिम बेचबिखान से बचैना मा सचेत हुई पर्ना बटोले बाटे टीकापुर नगरपालिका के महिला बाल बालिका शाखा प्रमुख संगीता शाह सामुदायिक रेडियो जातीय लैंगिक केल नहीं हुके वर्गीय असमानता न्यूनीकरण करना मेरके कार्यक्रम संचालन करना सुझाव दिले बाटे एक साथे स्वास्थ्य संबंधी मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन प्रजनन स्वास्थ्य संगे संबंधित जानकारी समेत ध्यान से ध्यान देने पर्न सुझाव देले बाटे सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र के अध्यक्ष तारा प्रसाद जोशी रेडियो में संचालन मरलक कार्यक्रम मजर हल बटोटी कानून संबंधी जानकारी देना कार्यक्रम संचालन करना रेडियो के प्रविधि विकास में जोर

0: तिरासी अन्ठाउन्न आठ सय पैतिस र अन्ठानब्बे छ पचासी चालिस सात सय सतहत्तर। समय बिहान दस बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन साउन नौ गते दोस्रो शनिबार।
1: विश्राम पाछे फेर स्वागत बा। अब बजारमा तरकारी महँगा हुइतिबा, स्थानीय तरकारी उत्पादनमा कमी आयल पाछे तरकारी के मूल्य धेर हुइलक हो। यहाँ किसान उकन संगे तरकारी उत्पादन घटलाको, बाहर से लाने पर्ना धुवानी ढेर लग्न रलको से तरकारी महँगा हुइल, व्यापारी उकन की कहाइबा। अब तरकारी किने बेर महँगा हुइलो, डेरामा बैठना विद्यार्थी उकन तरकारी खरीद के खैना समस्या हुई रहल विद्यार्थी गुंजना चौधरी के कहाइबा। टीकापुर के कमला नेउपा ने फे तरकारी महँगा हुइलक गुनासो करले बाटे। साउन महिनामा मच्छी शिकार नै खैन, व्रत बैठन रलक ओर्से फे तरकारी के खपत बढ़ना, मनोमूल्य ढेर हुइलक उहाँ बतोइती बाटे। उसका मौसममा तरकारी समेत रलक ओर्से तरकारी महँगा हुइलक, असुके बेमौसमी तरकारी हरेक वर्ष महँगी हुइती रहत। दैनिक रूपमा समेत काम करके खैना मनै महँगा तरकारी खैनामा समस्या रहल। टीकापुर एक राजपुर के विपिन चौधरी के कहाइबा। तरकारी व्यापारी बालकृष्ण चौधरी बाहर जिल्ला से तरकारी लाने पर्ना, धुवानी खर्चा ढेर लग्न रहले से तरकारी महँगामा बेचे पर्ना बाध्यता रहलवा। और तरकारी व्यापारी राम गोपाल चौधरी फे बाहर से लन्नक तरकारी ढेर मूल्य मा समेत ओ स्थानीय तरकारी उत्पादन मा रलक तरकारी सस्ता मा बेचती रहल बतोली बाटे। बजार मा अब हरियर तरकारी 80 रुपया से ढेर मूल्य मा बिक्री हुई रहल बा। हाल देश मा मनसूनी की वायु प्रभाव रहल बा। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार न्यू चापे रेखा सरदर स्थान से उत्तर ओर हलबा। विभाग के अनुसार अधिकांश स्थान में समेत आंशिक मौसम बदलती बा। देश के हिमाली भूभाग में कुछ स्थान में मेघर्जन चट्यांग सहित वर्षा होती रहलबा, उसको हिमपात के फिर संभावना बा। देश के पहाड़ी भूभाग में ढेर स्थान में मेघर्जन चट्यांग सहित मध्यम पानी पड़ती रलक बताइल बा। विभाग से मौसम बुलेटिन अनुसार कोसी, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई के कुछ स्थान तथा मध्य प्रदेश के ढेर स्थान में मेघर्जन चट्यांग सहित मध्यम पानी पड़ती रहलबा। कोसी, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी और कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में फिर एक दो स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहलबा। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार से वर्षा कर

0: थुके गम्भीर विराम पर्न तथा मृत्यु समय ठुसेक्न रलेको से मन्त्रालय से जंगली च्याउ नै खैन सर्वसाधारण हुकरण आग्रह गरल बा मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्रका निर्देशक डाक्टर राधिका थपलिया से सार्वजनिक गरल सचेतनामूलक सन्देशमा वर्ष केस मौसममा जंगली च्याउ प्रशस्त उम्रन रलेको से सबको च्याउ खैन योग्य नै हुन उल्लेख गरिल बा। खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम, विश्राम पाछ फेर सेवी सुनतिर बी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिए

0: बार
1: साथै प्रत्येक दिन एमबीबीएस फिजिसियन डाक्टर द्वारा पेट छाती मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ।
2: स्थान मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुरे कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर 9860071024 र 9860477417।
3: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। विनियोजित बजेटमा लौवा चार पाङ्रे सवारी साधन खरिद गरे पर्न रलसे अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँगै पूर्व सहमति लिए पर्न व्यवस्था करगिल बा। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गर्ला चालू आर्थिक वर्ष अघि बजेटमा कानून सम्बन्धी मार्गदर्शनमा पूर्व सहमति नै लैके कौन फे सवारी साधन खरिद गर समेत पहिन नै हो। वैदेशिक भ्रमणके लागि फे अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयले पूर्व सहमति लिए पर्न कहलबा। सरकारी स्वामित्वमा भवन उपलब्ध नै हुलक अवस्थामा केल मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्ग सफे समेत बाहिर रलक न्यूनतम पूर्वाधार हो सुविधा के समेत घर केल भाड़ामा लेहे पर्न बा। कार्यालय के कार्य सम्पादन केलक सरकारी निकाय से खाली रलक सरकारी भवन हे प्राथमिकता के साथ प्रयोग कर पर्ना। भाड़ामा लेना घर पूर्ण रूपमा सरकारी प्रायोजन के केल समेत हुइना व्यवस्था मिलैना मार्गदर्शनमा उल्लेख करगिल बा। जिल्लाकै पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा पर्न हिमाली गाउँपालिका क्यूडी स्थित के क्यूआरडी क्यूडी सड़क खण्डमा धुला चौरमनसे दुधिला खोलवा और जैतिकर लाक सु पप्र 01001 ज 1878 नम्बर के जीप दुर्घटना हो के नौ जने घायल हुइनामा हिमाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 नाटी खोला बैठना

स्थानीय तरकारी उत्पादनमा कमी आएपछि मूल्य वृद्धि, महँगामा तरकारी किन्न उपभोक्ता बाध्य। बाजुरामा जीप दुर्घटना, नौजना घायल, बुधबार से वर्षा कम हुइटी जैन हो। शुक्ला फाटा निकुञ्जमा सम्पर्क विहीन 17 जहनकी सकुशल उद्धार। बक्लक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह खबर सुना सक अब्रे के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टिगापुर एफएम सुनती विराम राम।

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई।
1: उफ बल्ल घरक भिटा निखोरैदा
2: मुस्कान पिछाई घरक भिटा हामी निके निउराइ छौ कि का खेतमा सखलाङका लाग मिनी लै जाई पर्ना रह
1: आबो उराइदा जान्ति बादा
2: ले ले वही मिनी बना कर भेजी है तू लै जा दियस ना।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ भिटा मत ढिला को बा माटी ने सब दिए पर का हाँ सब दियो अय्या दाई सब का डरल
2: दाई खै खै कहाँ काटो छाई
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरल
2: अरे लियो हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान हटे सब का डरलस लियो हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपुआ करलस कर
3: ना त्याओ काकी तो मुस्कान न्या त्या का शांत होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान न श्वास का न सुटाई हलचल नी का राखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो ता
1: बैठा
3: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा गर गहना निकब जैना मेकअप फाफसर बना रिट ओ हाथक चुड़िया की निकाल दी वाकर कटला ठाट भर नहीं चला ना
2: बैठा भैया सबो कटला ठाक आंजर पांजर चिर कर इंजेक्शन ले तान कर अथवा मुंह ले चूस कर बीस पोर निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबो कटला घाव आंजर पांजर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई थे नहीं हुई पानी थे नहीं बुझली
2: उसी नो कल से झर मेरा लान खा वही निटार खा वाकर सबो कटला ठाम और लगा दी उठा ना नानू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी ओ जड़ी बुटी फे प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानू बुझनु
3: पहला काकी रामेश्वरा मोटरसाइकिल लिखाए कहीं चा झट्टा से झट्टा साधन खोज का एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए सेक जाए कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाए दादा का अपना बेन ओटरा बिलासम हमारे गाँव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेकबाइट nepal.org का वेबसाइट खोलती कर तुम डाटा हम कह कर हेरा पड़ा हाँ हो स्नेकबाइट nepal.org वेबसाइट फिर खुलत हमार गांव से तो मिर्सहेत स्वास्थ्य संस्था में को सर्पदंश उपचार कई जिना रही था हो वहाँ ले जाए पड़ा मुस्कान होना
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर राकेश नानू आ गई
3: ला ले ले काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में बैठा रही का झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कला से मुस्कान हना बताई सीख जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहा कौन सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मुस्याकल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो न व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबो काल मोल के खा समझन साथ फिर काट से ठा संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकल से हुक्र सपो विषार अलग निरलग पहचान कह सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से दिल कल से सपो डसलक मन यहाँ बताई सक दिखा वो यूम से हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सकती था सपा दशलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाई यहीं ले उ मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अनि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा सरा तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका अनसेकले कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा फिर उस तबातीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं है रे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: के तपाई चाया डन्डीफोर दाद एलर्जी कपाल झर्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ
4: अब टिकापुरमा रहेको मनीष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू
5: यही साउन 9 गते शनिबारका दिन
4: मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ
3: मनीष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने इक्जेमा सोरियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने
5: डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते शनिबार
3: साथै प्रत्येक दिन एमबीबीएस फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट छाती मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ
4: स्थान मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क फोन नम्बर 98600-71024 र 98046-77417

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी टिकापुरकै राली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।
4: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक्र सम्पर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली। फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।

0: बुका पिएरै ठक बु पेन्सिलेरै ठक बु झलै फटाका आजि ठक का कना हो बाबा फ्यो ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झला अनला से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुई टीस जलम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठक कबु पेन्सिल हेरा कै ठक कबु झलै फटाका ठक बढ़िया ठाउँ से झला लान नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो ओ त का हो टीकापुर म रलक रगैया झोला उडोक म से आ झिंगरा दिदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबु लड़का का पिएरै ना कबु पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुइथिन कहिएक आनल झोला जसका टस बाटिन यी बुढोक ढंग कबु पसल छानकन झोला नि आन स्याक ठुइ
1: ल्याल्या मैं अब बिनी जइबु रगैया झोला उद्योग में
2: रगैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
4: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज

जेजुर बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समन्वत समाज के रक्षा मावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम अन्ताक्षरी अपन लक्ष्य सलाह के बैठक सक्कु रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह स्वागत के संगे अभिवादन करें चाहत में मिशन अमी क्या बैठक में बैठक के साथ भेटे बाबू रत्नपुर मगर सिंगारी कस्तिन बहाल खबर बेगलो कुशल मंगल आराम हुई भी मई एकदम आराम बाटो अपने एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आसन बाटो जे जहां हुई भी खेत में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजली में व्यापार में यात्रा में जहां रहे से कार्यक्रम में सहभागी जनाई दी कना मैं अपन अर्जी अनुरोध और निवेदन करना चाहतो विशेष करके गीत गायन एक चरहल रुचि रहल सब ग्रहल हमन संगाई कल करे सकती 091-5-61-255 अर्थात 091-5-61-255 लाइन एकदम खुला बा फटाफट डायल कर भी कल से अपने पर हमार रमाइल सहभागिता रही का नाम आपको कम जानकारी करती बाटू तो कार्यक्रम में इटी कर भी कार्यक्रम में सहभागी जन इटी कर भी करीब करीब 1:45 बजे से हम यात्रा कर देवी और ई महीना हो सावन के महीना संग संगे रमाइलो हम करब ई महीना एकदम रमाइलो महीना हो तमारे से फेन ई महीना में अपने के संगे संगे हमरे आज के दिन में फेन अपने संगे रमाइलो करब मजा मजा गीत संगीत सुनाब का नाम जानकारी कर दी कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश का रमाइलो गीत अपने अंताक्षरी खेले लगाई कर भी 091-5-61-255 के लाइन खुलाई पर तस्वीर लगे इंजॉय करी ये रमाइलो गीत गीत के पास में यही बताऊँ

0: हजुर हजुर आज सजनी बनके मोरे संगरी बिल्कुल रमाइलो गीत जोली कार्यक्रम बाटोमै मिशन के साथ थे बाबु रत्नापुर मगर और यो रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज जस्तो कि हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्र मार्फत आफ्नो के हाम्रो सुन्ने शक्ति कना मे आफ्नो जानकारी करते बारु जे जहाँ हुई भी खत में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटल में यात्रा में जहाँ रहे से कार्यक्रम सहभागी जन भी कार्यक्रम में भी आपने कर हमारे रमाइलो गफ हुई रमाइलो बातचीत हुई रमाइलो बात संगे संगे आपने होकर संगे हमें रमाइलो गफ कर आपका नाम आपको जानकारी करती बाटो तो फटाफट चाहिए डालकर भी सुने 91 5 61 255 अर्थात 09156125 लाइन एकदमें खुला बाका नाम आपको जानकारी करती बाटो तो कार्यक्रम में सहभागी जन आईटे कर भी कार्यक्रम में आईटे कर भी कोई टेलीफोन लाइन में आल बाटे मैं बोल करना चाहम के कहा से हजूर राम राम
1: राम राम हजुर राम
0: नारायण जी हो
1: हजुर
0: कसिन बा नारायण जी हाल खबर
1: बड़े बा कहाँ पल अपने सुनाई
0: एकदमै मजा बा हमार फैन लगभग लगभग आज पानी नहीं आई थो नहीं जस्ता गैल काल परौं लरौं पानी आई थी रहे कसिन हुई पानी के कारण काम धंधा कसिन हुई अपने के
1: वस्तो हेरि फटक फटक हेट कह परल जान मन हुई जाई
0: आज तो घाम लागल बा आज तो चाहिँ एकदमै जोरदार फील्ड में निकल हुई भी नहीं
1: हजुर हजुर
0: आज ठक्के हमन कौन ठाउ से हम समझलिए
1: हमरे यहाँ जुका कथै सत घर और मालिका गिराउन हो बाटो में
0: ओके वहां से फेन कार्यक्रम में चाहिँ सहभागी हुई ना मन लागल अब खाली बाटी की कसिन हो
1: एक ठाउँ काम बोहनी करके कपल खाली बाटो कपल
0: ओके ठके घसी कार्यक्रम में सहभागी हो जाऊ कना सोच थे कार्यक्रम में सहभागी जनैली नै
1: हजुर
0: ओके कार्यक्रम में सहभागी जनैली एकदमै खुशी ला आज का सुनै दी हम हन आज तो अपने गीत आज तो हम
1: गादम नै गर गीत छोटो
0: हजुर
1: गर गीत सुना
0: अंताक्षरी खेलना हो तर अंताक्षरी अपने नै खेलती तबे मारे मैं कहनु की अपने का सुनै दी ओके ली शुरू करी
1: नै गर गीत गादम
0: ली शुरू करी
1: सावन भरम सही महीना ऐ हो ऐ गेल प्यार कलीला

0: ढेर धन्यवाद कार्यक्रम में मजा गीत सुनेरी नारायण जी। अब भाई हमरे एक ठो गीत सुना अपने लग अपने किन किन सुनाई चाहबी नाम ले सकती।
1: सबसे पहले अपने हो रत्नापुर नगर है
0: धन्यवाद
1: और जब का भी मोर नाटक करे नहीं कार्यक्रम।

हजुर, कब दिन कब रात में बिल्कुल रमाइलो गीत के बाजा भन्छ स्वागत भा और अपने हुकन के संगे बाटो में मिशन और मेरे साथ देते बाबू रत्नापुर मगर अपने गुरु जे जहां भी खेत में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में बिपटार में यात्रा में जहां रहे सबन कार्यक्रम में सहभागी जने जी करी अधिवर के शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ब्रेक के पास में इन्हें बाटो रेडियो सर के कहो फैने जेबी तब संग एक व्यापार

0: विश्राम विश्राम के पास मैं नहीं बैठूं रेडियो छोड़ के कहूँ फैन जी भी
1: सब लगता चर्पी जाए टुका
2: ए रुको ना तो कोशिश हो कल से मैं टॉर्च लाइट और लच्छी दिए तू लेख जाओ
1: का चीज सुनो लच्छी और टॉर्च लाइट
2: का करो रही दाई राति बेला बाहर निकल पड़ से वा टॉयलेट जाए पड़ से जहा फिर टॉर्च लाइट बार खो लम्बा लच्छी देख के ना जाए पड़ता का करे की बर्खा छेक बा सांप रह से टॉर्च का अजरा ने सापन दिया खसेक दी था वो लच्छी ठेक ठेक आओ सुन खा साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
2: दाई हम ना स्कूल मैडम सर हूँ साफ नुक इतना ठाउसी म्यांग पड़ से वो काम कर पड़ से जहा फेठ होशियार भी पता गई खर सीख लाट का आम छेटवा दिवा झपा अथवा ध्यान घर चलक ठाव में न्यांग पड़ से डम्मा लच्छी देख ठेक ठेक बजेटी न्यांग पठा गई कल बाट
3: सात वर्ष छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसा पिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
1: मोस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लगह आई सक
4: विश्वास लगना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकता
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

हजुर बिल्कुलै रमाइलो गीत सुन्दै सुन्दै कार्यक्रम निर्धारित समय डगर काटे लागल अप्टा टाबाबेक एकजना बेला हो बाबु मारे अत्रबाट सूर्य सुनको साथ दिएर तुगन धन्यवाद और टेक में बैठ के साथ बाबू रत्नपुर में गए धन्यवाद और कल करके साथ संपूर्ण मर्ण संघ धन्यवाद देती अंतिम रमाइलो गीत छोटी मैं मिशन और कार्यक्रम में भेटना बाचा करती आज्ञा सा हम राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पास शुभ है रेडियो टीकापुर एफएम सुनते कर भी।

0: मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आने भाई छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
1: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
2: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
3: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
1: डेलिभरीका लागि
3: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
1: टीकापुर कैलाली
4: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98017 10672।
5: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: बुका पिएर कभी पेन्सिल कभी झलै फटाका आजी का कना हो बाबा फिर वस्त बाटिन गतिलो ठाउँसे झोला आनला से लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लबाती ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला जस का टस बातिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अपनी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
4: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
5: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
4: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
5: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
6: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: नहीं कमल सर।
1: आओ आओ, तू पायलट से आईना माता झील कर दो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं मिल सर, पायलट के 15 सफा रख लू, सर लग के घूमक रहते हूँ, चेयर सर लग में तो हलचल नहीं कर, मोर सपो का किठा पहनो तो पायलट जाके।
1: मोर सपो है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना?
0: नहीं चले ना सर।
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा पूरा से कह रहा हूँ, मोर सपो देखो कर से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूला से भी वाकर मरहल बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाँ साले पकड़ा नहीं भी
0: सर नौ सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मुआल से देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास संके सप्पा दस सकत वह वर्षे मुआल अवस्था में फिर सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी डेन तो निक नम्मा लच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं तो जाना से भी था
2: मुआल सापन से सावधान रही मुआलवा मार गई सप्पा होना पकड़ना व खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासे संपी सप्पा दस सिट्ठा संभव हुई सम सप्पो फोटो खींची व पहचान कलाक विज्ञापन से संपर्क करी
3: सर्पदंश से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पता लगाए लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: के तपाईलाई थाहा छ
6: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
5: हो र
6: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
5: अनि
6: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
5: के छ त विकल्प
6: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
5: बिस्तारै गर्दा हुँदैन
6: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
5: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
6: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली

लखनऊ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 26 20 300 98 656 92 026

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्धेक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने कर्ण स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उकरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप संप्रपात्र और नेपाली पात्र ऑफिसन टीहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के पंचवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण के लाग छलफल जारी तेसरो दिन खाने पानी सरसफाई सहकारी सुशासन संबंधी छलफल शारदा ब्यारेजमा चार पाङ्ग्रे सवारी सञ्चालनमा रोक शिक्षा स्वास्थ्यमा 3% कर हाल लागू नै हुन उपप्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयुक्त हुकुनकी संसदीय सुनवाई साउन 12 और 13 गते हुन सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के चौथा पंचवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण केलाग छलफल कलबाट मंगलबार सरसफाई खाने पानी सहकारी नैतिक शिक्षा सुशासन सम्बन्धी छलफल हिलवा निर्वित शिक्षक काशीराम ढुंगाना आगामी दिनमा सामुदायिक रेडियो के सदस्य संख्या वृद्धि करपना धेजोसिंह संघ संस्था सरकारी गैर सरकारी संस्था संघ समन्वय करपना वडापालिका संघ वार्षिक रूपमा सम्झौता ओकरके आधार वडापना सुझाव दिलबाट टीकापुर नगरपालिका के खाने पानी सरसफाई स्वच्छता उपशाखा प्रमुख कमल बहादुर रावल खाने पानी उपभोक्ता समिति जवाबदेही बनाइक्लाग समितिसँग अन्तर्क्रिया करपन्न खाने पानी सरसफाई सम्बन्धी सचेतना तथा निष्पक्ष खबरदारी सम्बन्धित समाचार समेटपन्न सुझाव दिलबाट टीकापुर नगरपालिका के आर्थिक विकास शाखा प्रमुख रंजु आचार्य के सामुदायिक रेडियो सहकारी शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन करपन्न सहकारी की सूचना नियामक निकाय की सूचना सम्प्रेषण करपन्न सहकारी की व्यवसायिक करला गतिविधि सम्बन्धी समाचार बढ़ेना पन्ना ओध्यसिन दिवस पार्की कार्यक्रम सञ्चालन करपन्न अडियो संघ भिडियो कार्यक्रम हफे निरन्तरता देहपन्ना बोटिलोवाटी जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 के वडा अध्यक्ष सुरेज चौधरी सामुदायिक रेडियो के कल काम के प्रशंसा कति आगामी दिनमा सामुदायिक रेडियो संघ सहकारी करके आगा बढ़ा पर्ना प्रतिबद्धता व्यक्त कलबाटी टीकापुर छस्थित लक्ष्मी नारायण बहुदेशीय सहकारी संस्था लिमिटेड के अध्यक्ष कपूर सिंह कढायत गलत सूचना कलक सहकारी के गलत प्रचार हुलक बोटिलोबाट वहां के संस्था मजा बनाइक्लाग संचालन समिति हो कर्मचारी मजा हुईपर्ना बोटेटी रेडियो अब मजा छवि बनाएन सफल हुलक बोटिलोबाट सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संचालक समिति अध्यक्ष डाक्टर योगेन्द्र बजगाई सामुदायिक रेडियो के टावर केलाग प्रदेश सरकारसँग बार बार अनुरोध कल सफे सुनवाई नहुलक बोटेटी आगामी दिन म रेडियो के क्षमता के लागि स्थानीय सरकार सहयोग गर्न आग्रह कल कार्यशालामा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के स्टेशन मैनेजर एकिन्द्र तिमुल सेना सहजीकरण कर्ला रहे। शारदा ब्यारेजमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन आवत जातमा रोक लगाइवा महाकाली लदे

0: पानी के भाव बढ़ती गलत सतर्कता तह पारल पासा शारदा बेरिसमा गाड़ी आओ जतमनी सेत कलबाट आज बिहान के लदेमा पानी के भाव 1,00,000 क्युसेक नागलपासा जिला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर के प्रहरी नायब उपनिरीक्षक बहादुर राउत के निर्देशन में रोक लगाइलबा। आज दिन के 1:30 बजे होर मापन अनुसार महाकाली के जल स्तर 1,24,454 क्युसेक पुगलबा। महाकाली लदेमा जलस्तर बढ़ल पासा शारदा बेरिस ब्यारेसम चार पांगे सवारी साधन संचल में रोक लगाइलसेफे। बिहान के दिन के मापन में जलस्तर बढ़ल रहा। सुदूर पश्चिम के पहाड़ जिला में निरंतर वर्षा के कारण महाकाली नदी में पानी के बहाव उल्लेखीय रूप में बढ़ल। सुदूर पहाड़ में अभिनफे वर्षा होती रह लद्या बहाव अभिनफे बरसेकना संभावना लकटी। महाकाली लद्या आसपास के तटीय क्षेत्र के बासिंदा उच्च सतर्कता अपनी स्थानीय प्रशासन आग्रह कलबाट। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग सुदूरपश्चिम प्रदेश के अधिकांश ठाउँमा कुछ दिन मध्यम से भारी वर्षा के संभावना लग्जने लगा। छोट लद्याओ खुलवा तथा नाला में आकस्मिक बढ़ी आईन सिक्ना हुलक सतर्क रहना विभाग आग्रह कलबाट। खोज खबरमा एकरी विश्राम विश्राम पासा फेर से विश्वतिरवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र 2083-84 नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको बेवरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिस नेपाली हेल्थ एण्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिस डेभलपमेन्ट स्टडिज सोसियोलोजी एण्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली।
0: के तपाईलाई थाहा छ
3: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र
3: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
0: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
0: के छ त विकल्प
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन
3: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
4: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटिए। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम्म मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्रा सम्पर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल भिडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित अटो एनालाइजर से सक्कु रगत जाँच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हात जोड्नी सेवा, टुटल हात जोड्नीमा प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जाँच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा सँग तालिम पाइल स्वास्थ्य कर्मी से क्षयरोग तथा कुष्ठरोग सम्बन्धी सेवा फेले जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड, गोलचोक लगह, टिकापुर कैलाली। फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9848423759।
0: विश्राम पाछा फेरि स्वागतमा। सरकार निजी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगायत 3% समता कर हटाइलबा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन कलक आम मनैन के थप खर्च निराशा भोगपना देख्न कुल्ले कति अब किलाक समता कर हटाइला कुल्ले कलबाट। प्रधानमन्त्री शाह अर्थमन्त्री स्वर्णी मगलेसँग परामर्श पाछा हाल किलाक शिक्षा समता शुल्क व स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नैकर्ना निर्णय कलक बुटिलोबाट। ए सरकार जनता के विश्वास अपेक्षामा से बल्लक जनमुखी सरकार हो। हमर मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम करते सकु नागरिक गुणस्तरीय जीवन के अनुभूति करना हो कि प्रधानमन्त्री शाह कलबाट 3% समता कर लक उद्देश्य दुर्गम पाछक पलक क्षेत्र के नागरिक मजा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करना दलित सीमांतकृत तथा विपन्न बाल बालिका हुकन सहयोग करना स्वास्थ्य बीमा विस्तार करना व कलाक आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटेना लक प्रधानमंत्री के कहिबा वहां के कर के दायरा विस्तार करके अर्थ तन्त्र अभिन व्यवस्थित बन्न लक्ष्य सहित उक्त व्यवस्था ललक बोटिलोबाट। वहाँ नागरिक तहमा समता देखलक समता करप्रति के प्रतिक्रिया सरकार के गम्भीर ध्यान आकर्षण करलाको नागरिक के माग सुन्न ती आँख बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता अटल हो स्पष्ट ललक बोटिलोबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा आफ्नो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्ला भ्रमण के क्रममा अपनाइपना रणनीतिक समय जनसंवाद और सांगठनिक सुदृढ़ीकरण बारे पाँच बुधे निर्देशन जारी कलबा। पार्टी के महामंत्री विपिन कुमार आचार्य मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै सांसदहरूको निर्देशन दिलबाट सुशासन जवाबदेहिता और नागरिक केन्द्रित राजनीतिक आधारभूत मर्मह संस्थागत गर्न संसद हो तर तहके नागरिक बीचके जीवन्त संवाद अपरिहार्य अलग पत्रमा उल्लेख बा संसद के भ्रमण औपचारिकता हो व्यक्तिगत जनसम्पर्कमा केही सीमित नै रहे पार्टी के दृष्टिकोण विस्तार गर्न संगठन हुकन ऊर्जावान बनेन हो जन अभिमत संसद के एजेण्डा के रूपमा रूपान्तरण गर्न रणनीतिक अभियान हुइपर्ना पार्टी के निर्देशनमा उल्लेख बा। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पासा फेरि विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
5: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
6: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
5: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका?
6: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
5: अब त म ढुक्क।
7: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
6: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
8: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान।
9: साउन 16 गते तेस्रो शनिवार का दिन
10: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
8: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
10: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
9: डाक्टर आउने दिन साउन 16 गते तेस्रो शनिबार
11: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772
12: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
13: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू
12: नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बञ्चरो
13: हटब्याग थर्मस जर्किङ पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008
0: विश्राम पाछा फेरि स्वागतमा निर्वाचन आयोगकी प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त आयुक्त हुकुनकी संसदीय सुनवाई आगामी 12 औ 13 गते हुन हुँदा संसदीय सुनवाई समितिकी आजकी बैठक निर्वाचन आयोगकी प्रमुख आयुक्तमा प्रस्तावित मान बहादुर कार्की आयुक्तमा प्रस्तावित डाक्टर राजीव सुब्बा गुरूप्रसाद वाग्लेकी संसदीय सुनवाई साउन 12 औ 13 गते कर्णाली करगिलमा समितिकी 12 गते मंगलबार निर्वाचन आयोग आयोगकी आयुक्तमा प्रस्तावित डाक्टर सुब्बा वाग्ले संसदीय सुनवाई कर्ना 13 गते बुधबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कार्की के संसदीय सुनवाई गर्न निर्णयकलक समिति सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ जानकारी दिलबाट संसदीय सुनवाई आख समितिकै प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा आयुक्तको विरूद्ध पलक उजुरीमा छलफल कर्के सुनवाई गर्न जनैलबा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित मानबहादुर कार्की विरूद्ध एक ठो उजुरी पलक हो आयुक्त हुकुममा प्रस्तावित सुब्बा वागले विरूद्धको नफे उजुरी नै पलक समिति सभापति श्रेष्ठ जानकारी दिलबाट अस्थाका एक ठो उजुरी संसदीय सुनवाई समितिकै कार्यवाही प्रभावकारी बनेन विषयमा सुझावके रूपमा प्राप्त हुलसकी समिति जनैलबा समितिमा प्राप्त उजुरी ओ प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयुक्त हुकुनकी कार्ययोजना समिति संसदीय सदस्य हुकुन अध्ययनकेला वितरण कलबाट संसदीय सुनवाई समितिकी प्रस्तावित व्यक्ति हुकुन कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण के क्रम नतिजामा आधारित कार्ययोजना लन्न आग्रह समेत कलबाट गत असार 19 गते बैठक संवैधानिक परिषदकै बैठक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्की निर्वाचन आयुक्त पदमा डाक्टर राजीव सुब्बा गुरूप्रसाद वाग्लेह नियुक्त गर्न सिफारिश गर्न रहे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमकी पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माणकै लागि छलफल जारी तेस्रो दिन खानेपानी सरसफाई सहकारी सुशासन सम्बन्धी छलफल शारदा ब्यारेजमा चार पङ्गे सवारी साधन सञ्चालनमा रोक शिक्षा वा स्वास्थ्यमा 3% कर हाल लागू नै हुन प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा आयुक्त हुकुनकी संसदीय सुनवाई साउन 12 औ 13 गते हुन गीता बुक्ला खोज खबर रह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डिटिया बुक्ला खोज खबर से मैसिता चौधरी विदाई टू एक पास 6 बजे के खोज खबर सुन सिक्वे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्दी रवि राम राम
14: राहुल कमल आइन बुक खाइल बाटो त
15: हेरिन काका आई फुला टुरे बारीमा गेल रही सपो काट देली बीस निकाल देवी की कहके लेके आयल बाटो
14: सपो कटक बीस तक उपचार कर सर्वदम सब उपचार केन्द्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई उहाँ दक्ष तथा तालिम प्राप्त चिकित्सक हुँ र बिखार सब पकट लग हो कि नहीं हो के पट्टा लगा ख सर्पदम से उपचार में प्रयोग होना एंटी भेनम से उपचार कर
15: सर्पदम से उपचार केन्द्र के विषय में मैं फिर सुनल तर
14: तर कुछ दिन कही आना तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था अत्यक्त चिंता नहीं पड़त
15: खाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कई सकली बात
14: एम्बुलेंस आ पुगना समय लागत के था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केन्द्र में ले जा दी
16: वे बाबू संदेश वह रोक झट बाहर आता सर्पदंश प्रभावित जिल्लामा बेरमेनका समयमा जो उपचारकै ख ज्यान जोगिना उद्देश्यले सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा बा यी उपचार केन्द्रमा सर्पदंशक उपचार निशुल्क हुइथा। सापनका कटाईले मनैनक मृत्यु नभएकै ख सरकार सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुना एन्टिभेनम निशुल्क उपलब्ध गरैलबा। आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र सम्पर्क नम्बर ठहरलरह पठा। सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा ह्याएर सेर्दिथा।
17: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
18: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जनाऊ का ना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेला बाट। अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्त बनी हो ना, उत्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: बाढ़ी पहिरोले प्रत्येक वर्ष नेपालमा धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ। त्यसैले बाढ़ी पहिरोको समय अगावै समुदायमा जनचेतना जगाउने र न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउनु पर्छ।
1: जोखिम स्थलको पहिचान तथा पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ।
0: सुरक्षित स्थानको पहिचान र सो स्थानमा जान सकिने बाटोको पहिचान गरिराख्नुपर्छ।
1: एकोहोरो लामो समयसम्म वर्षात भयो भने पहिरो तथा बाढ़ी जान सक्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ र सचेत रहनुपर्छ।
0: बाढ़ी आइहालेमा घरको विद्युत लाइन तुरन्तै बन्द गर्नुपर्छ।
1: सुक्खा खानेकुरा, औषधि, प्राथमिक उपचार सामग्री, बहुमूल्य गहनाहरू र आवश्यक कागजातहरू लिएर तुरन्तै अग्लो तथा सुरक्षित स्थानमा जानुपर्छ।
0: सुरक्षित स्थानमा जाँदा घरको झ्याल ढोकाहरू राम्रोसँग बन्द गर्नुपर्छ।
1: यस्तो अवस्थामा वृद्ध, केटाकेटी, अशक्त तथा गर्भवतीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।
0: विपदको घटना भएमा तत्काल रेडक्रस तथा सुरक्षा निकायलाई खबर गर्नुपर्छ।
2: कार्यक्रम छोटमिट साता के बुधबार दिन के एक बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
3: जब देखनो तुहिन है।
2: यदि मन परत हुई कल से अपन मन सुनना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 091-561-255 साता के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेला बाट। अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कमर घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
3: भागीरथी मेडिकल टीकापुर में विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना डाक्टर बम बहादुर को क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेंटर टीकापुर में साउन 9 गते दोस्रो शनिवार का दिन नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत धेरै अनुभवी र सीनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकियाट्री आउने भएपछि निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौका को फायदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु मुटुको धड़कन कम वा ज्यादा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जिउ झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-685-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो शनिबार।

0: के तपाईँ चाया डन्डीफोर दाद एलर्जी कपाल झर्ने समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्छ?
1: अब टिकापुरमा रहेको मनिष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू
2: यही साउन 9 गते शनिबारका दिन
1: मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
0: मनिष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू: अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या, छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने, इक्जेमा, सोरियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने,
2: डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते शनिबार,
0: साथै प्रत्येक दिन एमबीबीएस फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट, छाती, मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ।
1: स्थान मनिष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर 1, कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर 9860071024 र 9846777417।
3: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधबार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
4: जब देखनो तो हिन है।
3: यदि मन परत कल से अपन मन सुनेना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0915612555 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: का पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरा
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ हो टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला जस कटरास बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: का हुई कमल अहन बुक खाइल बाट उठ
1: हेरी न काका काई फुला टूरे बारी में गेल रही तबो काट देली बीस निकाल देवी की कह के लेके आयल बाटू
0: सब कटलक बीस तक उपचार कर सर्वदम से उपचार केंद्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ बिखार सब कटलक हो कि नहीं हो पट्टा लगा कर सर्पदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी भेनम से उपचार कर
1: सर्पदम से उपचार केंद्र के विषय में मैं फिर सुनल तो रहू
0: सर कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केंद्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था हतक के चिंता नहीं पड़त
1: खाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात
0: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी रे बाबू संदेश गैरों का छत बाहर आता
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमेन का समय में जो उपचार के खर जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केंद्र संचालन में बा ई उपचार केंद्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटी भेनम निःशुल्क उपलब्ध करेला बा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केंद्र संपर्क नंबर ठहर लड़ा पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पर्चा लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेवा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश